कि इंसान का कमाल सिर्फ और सिर्फ तक़वे के रास्ते में, इसके अलावा किसी और रास्ते में, क्योंकि अगर यह बात लोगों के समझ में आ गई होती तो जितने बातिल रास्ते थे सब छोड़ दिए जाते, सिर्फ हक रास्ते पे अमल होता है। कुरान मजीद में वादे हैं, मुसलसल वादे हैं, रवायात में वादे हैं, बहुत सारे वादे हैं। तक़वे को लेके खुद मौलाए मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का पूरा खुतबा है, यहाँ पे हम लोगों ने उस पर गुफ्तगू भी की है। कुरान मजीद में तक़वे से मुतालिक बहुत सारी आयतें, तक़वा बात हो चुकी, दरअसल यही है ना कि इंसान दीन पे अमल कर, जिन चीज़ों को अल्लाह ने वाजिब किया है उस पर मिनिमम तक़वा है, अलबत्त तक़वे के मरातब आगे जाके काफ़ी बुलंदी तक है, मिनिमम कम से कम तक़वा यह है कि इंसान वाजिब पे अमल करे और हराम से अपने आप को बचा ले जाए, परहेज कर ले, दुनिया की किसी भी चीज़ के लिए ये इस मामले में कंप्रोमाइज़ ना करे, कुछ भी हो जाए, कोई भी लालच हो, कोई भी डर हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह का हो, कैसा फ़ायदा हो कैसा नुकसान हो, किसी भी चीज़ के लिए इस मामले में किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। दरवाक़े यही इंसान की ताकत है, यही इंसान की सलाहियत है। अगर इंसान इस रास्ते पे चलता है तो अल्लाह ने बहुत सी चीज़ें देने का वादा किया, तुम्हारे लिए हम रास्ते खोल देंगे, ये तक़वे को लेके डायरेक्ट। हत्ता अगर हम सिर्फ कुरान मजीद की उन आयात को देखें कि जिनमें अल्लाह ने तक़वे के फ़ायदे बयान किए हैं या एक हिसाब से वादा किया है या वादे किए हैं कि मसलन हम तक़वे के उसमें ही देंगे, तो ये कम चीज़ें नहीं हैं और ये छोटी मोटी सआदत नहीं है कि जो इंसान को मिली। फिर तक़वे का हमारा मरतबा और मरहला जितना बुलंद होता जाएगा उतनी अल्लाह की अता का भी मेयार बढ़ता जाएगा। एक्चुअली एक हिसाब से देखा जाए तो इंसान को किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने की एक सलाहियत होती है ना, इंसान के पास कुछ भी हो हर एक को नहीं दे देता। अल्लाह जो अपनी नेमतें, जो लुत्फ व करम बंदों को अता करना चाहता है, वो बंदों में उसकी सलाहियत देखता है और उसका मेयार, जो बुनियादी मेयार है वो तक़वा, कितना आपके अंदर हमारे अंदर तक़वा है उस हिसाब से अल्लाह अपनी नेमतों को अता करता है। ये बातें कुरान मजीद में हमने बारह पढ़ी हैं, और तर्जुमे के साथ पढ़ें तो वो चीज़ें जहन में भी आएँ, रवायात में पढ़ी हैं, पूरा पूरा खुतबा पढ़ा है, और आज के ज़माने में हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली देख रहे हैं। दुनिया के लिए तक़वे को छोड़ते हैं ना, कंप्रोमाइज़ क्यों करते हैं, कभी ओहदा, कभी दौलत, कभी ताकत, कभी फलां, कभी फलां, दुनिया की ये सारी चीज़ें जमा हो के बेबस नज़र आ रही हैं उन शख्सियात के सामने जिन्होंने तक़वे को मियार बनाया। यह है कि नहीं आज हमारी हकीकत, अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब देखने के बाद भी अगर किसी के ईमान में इजाफा ना हो तो इसका मतलब कि फिर उसका दिल जो है बहुत ही ज़्यादा सख्त हो गया है, बहुत ही ज़्यादा गाफिल है। अपनी आंखों से हम देख रहे हैं ना, आज दुनिया की जितनी ताकतें थी, दौलत, हुकूमतें, असलहे, जो भी आप तसव्वुर कर सकते हैं, मीडिया, सब जमा हो गया था, सब कुछ हुआ था, लेकिन वो बेबस है किसके मुकाबले में, जिन लोगों ने तक़वे पे जोर दिया था, जिनकी बुनियाद था, उन्होंने भी सब कुछ किया। तक़वे का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आप दुनिया को तर्क कर दें। अगर कोई आपसे ऐसा कहता है कि इस तरह का कोई तक़वा है तो आपको गुमराह करने की कोशिश कर, तक़वे का बिल्कुल मतलब नहीं, लेकिन हर चीज़ की बुनियाद अल्लाह की मर्जी पे होनी चाहिए। हम अपनी ज़िंदगी में 24 घंटे में जो भी करते हैं, हर काम के लिए सिर्फ इतना सोच लें कि ये हमारे अल्लाह को पसंद है कि नहीं, बस इतनी सी बात। अगर पसंद है तो बिस्मिल्लाह, नहीं पसंद है तो ख़त्म, क्योंकि अल्लाह से बड़ा तो कोई नहीं, और अल्लाह अकबर कहते भी हैं। यही वो जगह है कि जहाँ से तक़वे का आगाज़ होगा और इसी में हर दुनिया और आखिरत हर चीज़ की कामयाबी है। आइए इसके बाद अमीरुल मोमिनीन मौलाए मुत्तकियान हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के कलमात क़िसार पे हम लोगों की गुफ्तगू चल रही है, और हम लोग अब तक जो गुफ्तगू की वो ये कि अल्लाह ने ईमान को फ़र्ज़ किया ताकि शिर्क से पाक कर सके।

0: मेहमान पे इससे पहले काफी पहले कई साल पहले हम गुफ्तगू की थी कि मेहमान का मतलब ये होता है कि मेहमान मेजबान के अतबार से चलता है ना, मेजबान क्या कह रहा है। वहां पे जाके हम भी यही करते हैं, अल्लाह ने कहा कपड़े बदल दो, इस तरह के पहन लो, ठीक है। अल्लाह ने कहा यहाँ पे तवाफ कर लो, यहाँ पे आके ठहर जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ दुआ पढ़ो, यहाँ नमाज पढ़ो, यहाँ पे सही करो, कहता गया हम करते गए। कुछ दिनों तक अल्लाह की हुक्म की इताअत करके हमको अपने को आदी बनाना चाहिए कि अब पूरी जिंदगी में अल्लाह जो जो कहता जाए हम वैसे ही करते जाए, क्योंकि वहां पे तो हर चीज में है अल्लाह का हुक्म आता है ना, रहना सहना खाना पीना उठना बैठना हत्ता आईना देखने तक में अल्लाह का हुक्म शामिल है। इन सालू हो आता हूं, अगर ये अल्लाह से मांगेगा सवाल करेगा तो उसको अता करेगा अल्लाह। अब ये अलग है कि हमारा क्या शऊर है कि हम क्या मांगते हैं क्या सवाल करते हैं। व इन दाऊ अजाब हूं, और अगर वो उसको पुकारेगा तो उसका जवाब देगा। वहां पे जाके ये इंसान की कुर्बत कुर्ब इलाही ज्यादा बढ़ जाती है, ये बंदा अल्लाह से ज्यादा करीब और नजदीक हो जाता है। लिहाजा आइए इसका खुलासा करके आज इस बात को खत्म करें, इससे ज्यादा नहीं लगता कि मुनासिब है इस पर बात करना, काफी लंबी गुफ्तगू हो गई। रवायात से ये वाजे होता है कि ये जो दो रवायतें पेश किया, अगरचे बहुत सारी रवायतें हैं, कि हज इंसान को अल्लाह से करीब करता है। करीब कब होता है अल्लाह? हमारे और अल्लाह के बीच की दूरी हमारे गुनाह, गुनाह जितने पाक होते जाएंगे उतना हम अल्लाह से करीब होते जाएंगे। हज और उम्रे से या उसकी वजह से हम अपने गुनाहों से पाक होते हैं, लिहाजा अल्लाह से मजीद। इसीलिए कहा गया है कि हाजी को हत्ता उम्रा करने वाले को इस बात की रियायत करनी चाहिए कि लौटने के बाद अपनी उस कैफियत को बाकी रखे, जो कमा के लाया है उसकी हिफाजत भी तो करे ना। लोग जाते हैं दूसरे मुल्क कमाने, तो क्या जब आते हैं वहां से कमा के लौटते हैं तो उसको यूं ही सड़क पर छोड़ देते? जो कमा के लाए हो उसकी हिफाजत करो। लिहाजा नतीजे में क्या होगा? अल्लाह से कुर्बत, और दिन ब दिन यह कुर्बत बढ़ती जाएगी इंशाअल्लाह। और यही चीज ये जो हज है, और वहां पे जाके जब इंसान जमा होता है और इलाही अहकाम पे अमल करता है, तो ये इंसान के अंदर दीन की बका और मजबूती का सबब बनता है। ये हज इंसान के रूहानी शऊर को बुलंद करता है, समाजी शऊर को, सोशल शऊर को बुलंद करता है, और उन फवायद को पहुंचाता है जिसके नतीजे में जो दीन है इंसान के अंदर दिन ब दिन कवी से कवी। यानी ऐसा नहीं है कि हज किया, हज करने के बाद हमको एक कुव्वत मिली फिर आके, नहीं। फिर अगर इंसान उस फलसफे को समझ के अमल करता रहे तो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। यानी वो आता है अल्लाह की कि लौटने के बाद भी उसका मीटर बढ़ता रहता है अगर इंसान सही तरीके से अंजाम दे। उन्हें लौट के फिर वो उन्हीं सारे गुनाहों में लग गया, उसी सारी बदबख्ती में लग गया, तो जो लाया था वही नहीं बचेगा, आगे बढ़ना तो दूर की बात है, अलग बात है। बहरहाल हमको इस जहद से भी गौर करना चाहिए कि हज पे जाने से पहले हम क्या करें, इस जहद से भी गौर करना चाहिए कि लौटने के बाद क्या करें। और ये तो बहरहाल अहम है ही कि वहां पे जो कर रहे हैं वो क्या और क्यों कर रहे हैं, तो इससे इंशाल्लाह हमारे हज की कैफियत और उसकी क्वालिटी में तब्दीली पैदा होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आयतनकल कौसर फसल ले रब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर।
1: अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل
0: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحزرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون اللهم صل وسلم على صاحب الدعوة النبوية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: وصالة الحيدرية
1: اللهم صل على محمد

हम लोग कहते हैं ना शादी, जब किसी सुनते हैं शादी, माशाल्लाह मुबारक हो, अल्लाह मुबारक करे, जिसका आगाज ही हम हराम काम के जरिए से कर रहे हैं, कैसे वो चीज़ मुबारक हो सकती है? अगर शादियां मिक्स गैदरिंग के जरिए से हो रही हैं तो बुनियादी आगाज ही ना, जिस जगह पे ये तकरीब हुई है, जहां से ये शादी हुई है, वो तकरीब ही हराम वाली थी, मिक्स गैदरिंग वाली थी, कैसे हम उसके मुबारक होने की दुआ और कैसे वो दुआ कबूल हो सकती है? गौर करने की चीज है। सिर्फ ये नहीं कि मसलन अगर अली ना होते जनाब फातिमा का कोई कफ नहीं था और माँ जनाब फातिमा ना होती तो माँ, सही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब इन लोगों ने जब शादी की तो हम ये देखें कि कैसे उन्होंने क्या मेयार बनाया कि जो लड़की ढूंढी, क्या मेयार बनाया जो रसूल ने लड़का ढूंढा, क्या मेयार बनाया कि जिसकी बुनियाद पर निकाह हुआ, किस बुनियाद पर शादी हुई, कैसी शादी हुई, शादी में क्या हुआ, ये भी चीज़ें तो हैं ना हमारे लिए सीरत। सिर्फ ये थोड़ी है कि हम खाली वो दो चार कलाम पढ़ लें और तारीफ कर लें और हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। आया आज हम लड़की और लड़का उसी मेयार पे तलाश करते हैं जिस मेयार पे मौलाए कायनात और सिद्दीक़ तहरा ने तलाश किया था? गौर करने की चीज़ है। उनके और हमारे मेयार में अगर फ़र्क है तो आया ये चीज़ साबित करती है कि हम अली वाले हैं? दावत फिक्र है ये। शादी के बाद की प्रोग्रामिंग जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात से सवाल किया कि अली आपने हमारी बेटी को कैसा पाया, क्या जवाब था? अव्वल तो ये सवाल ही आज के ज़माने में फिट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि हमारी फिक्रें काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। मौला का क्या जवाब था? इताअत परवरदिगार में बेहतरीन मुआविन पाया। ये बताता है कि शादी के बाद के अहदाफ, मकासद, प्रोग्रामिंग, उसकी बुनियाद क्या है, हमारे यहाँ क्या प्रोग्रामिंग होती है। काफ़ी कुछ तब्दील करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि जो हमेशा से होता आया है, ये हमेशा से होता आया से मोहब्बत, ये खुद एक बुत परस्तिश है, बुत की परस्तिश है, ये बुत होता है, हमेशा से हमारे यहाँ होता आया है, हमेशा से हम करते आए हैं, हमारे बाप दादा ने किया है, ये किया वो किया, ठीक है, उन तक बात नहीं पहुँची थी, उन्होंने किया, हो सकता है कि शायद अनजाने में किया हो तो अल्लाह उनको गुनाह भी ना, अजाब भी ना दे, लेकिन अगर हम जान के कर रहे हैं तो हम तो फिर मुस्तहक होंगे सजा के। खूब शादियों में इस्लाह की सख्त ज़रूरत है, चेंजेस की ज़रूरत है। मौजूदा जो हालात हैं, अजीब हालात हैं, और दिन ब दिन बड़े पैमाने पर तब्दीली होती जा रही है, अरब ममालिक दिन ब दिन उनकी हकीकत खुल के सामने आती जा रही है, और यह बात बाकायदा अब साबित हो रही है कि ये अमेरिका और इसराइल के पस्तरीन ग़ुलाम हैं, शायद ग़ुलाम कहने से उनकी वो औकात और हैसियत बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होने पाए, पस्तरीन ग़ुलाम, नहायत कितनी पस्ती तक, बहरहाल जो कि एक तूलानी मुद्दत से ऐसे मौके पे, जबकि पूरी दुनिया ये बात कह रही है कि सुन्नी शिया इत्तेहाद एक मजबूती है, इस्लाह का रास्ता है, बेहतरीन रास्ता है, फ़ायदे हैं, उसके फ़ायदे दिख रहे हैं, ऐसे मौके पे एक तूलानी अरसे से बहरीन में शियों के ऊपर जुल्म करके इस आग को मुसलसल भड़काने की कोशिश हो रही है। अगरचे वो कामयाब नहीं है, क्योंकि इन हुकूमतों को अब ये भी समझ में आ गया कि इनकी कोई बहुत ज़्यादा औकात नहीं है, दुनिया के एतबार से भी इनकी कोई हैसियत नहीं है, और जिनकी ग़ुलामी में है उनकी निगाह में भी कोई हैसियत नहीं है, इससे ज़्यादा तो किसी घर में पले हुए कुत्ते की औकात होती है कि कुछ तो उसकी, इनसे सिर्फ फ़ायदा उठाया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं है, मगर इनकी मजबूरी यह है कि अपने आप को इतने पस्त पैमाने पर जाके बेच चुके हैं कि अब वहाँ से निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, इस हद तक पस्त है ये। बहरीन जो कि मुसलसल तशैयों पे जुल्म कर रहा है, इन हालात के बाद से, ख़ास करके माह मुबारक रमज़ान की जंग के बाद से, बहरीन में शियों के ख़िलाफ़ जो एक ज़बरदस्ती जबर और ये इस तरह की कार्रवाई है वो काफ़ी तेज़ कर दी गई है, गिरफ़्तार किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, हत्ता बास को वतन से निकाल दिया जा रहा है, और बहुत सारे बहरीनियों को कैद किया गया है, हत्ता मौत की सज़ा दी जा रही है।

ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। 31 लोगों की लिस्ट है न्यूज में, यहाँ पे वक्त नहीं है कि हम उन सबको पढ़ें, जरूरत होगी तो हम बता देंगे, जिसमें अक्सर उलमा है कि जिनके खिलाफ बहरैन की हुकूमत ने कार्रवाई की है। लिस्ट है 31 लोगों, किसी को भी चाहिए होगा तो दे देंगे जो भी है। अलबत्ता ऐसा नहीं कि सिर्फ 31 ही है, इससे पहले भी नाने कितनों पर हो चुकी है, उसके बाद भी अब तक न्यूज से अब तक में हो चुकी है और काम तो उनका चल ही रहा है, जुल्म और तशद्दुद का सिलसिला चल रहा है। जमीयतुल अमालुल इस्लामी, इन्होंने बहरैन की आवाम से इस बात की गुजारिश की है कि वो पुरअम तरीके से इसके खिलाफ एहतजाज करें। इसी तरीके से यमन के उलमा ने भी अपने बयान में इस बात की अपील की है कि इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज करें। हम सब की भी जिम्मेदारी है, दुनिया में कहीं भी जुल्म हो आवाज़ उठाना चाहिए। हम अपने यहाँ जो भी मुमकिन हो हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, जो भी जुल्म कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए से, प्रोग्राम जैसे भी मुमकिन हो हम आवाज़ उठाएं। बारह इस बात को अर्ज़ किया और अपनी आंखों से भी देख लिया है, जुल्म की मिसाल आग से बदतर है। अगर इंसान आग लग जाने पे ये बैठा रहे सोच के कि पड़ोसी के घर में है हमारा घर तो महफूज है, तो ये आग रुकने वाली नहीं है। आग को आपके घर पहुंचने के लिए फिर भी एक राबता चाहिए सिलसिला, जुल्म को राबता नहीं चाहिए, फिजाएं ही उसके लिए राबता, अगरचे बाज़ औक़ात आग के लिए भी होती है फिजा। ये हमारी जिम्मेदारी। जल्दी से एक दो बात और, गज़ा में मुसलसल भुखमरी, कत्लेआम, ये सारी चीज़ें शुरू हैं। ये मत समझें कि जंग रुकी हुई है, जंग बिल्कुल नहीं रुकी है। लबनान से मुसलसल जंग चल रही है, लबनान हिजबुल्ला पे मुसलसल इसराइल हमला कर रहा है, दूसरी जगहों पे हो रहा है, ख़ास करके गज़ा के मज़लूमीन पे वो जुल्म, वो जो बंदिशें थी वो सब अपनी जगह पे बाकी हैं। एक बहुत अहम चीज़ है जिसको बहुत जल्दी सर्च कर दें, पोप लियो ने 14वें इन्होंने जमहूरिय इस्लामी ईरान के जो सफ़ीर हैं वेटिकन में, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुख्तारी, उनको सरीर मुकद्दस का सबसे बड़ा सिफारती एवार्ड दिया। ये एवार्ड उन लोगों को दिया जाता है कि जो मसलन सफ़ीर हों या इस तरह के लोग हों कि जो अमन के लिए और रवाबित को मजबूत करने के लिए कोशिश करते हैं। पोप की तरफ से ईरानी सफ़ीर को एवार्ड दिया जाना आज के इस माहौल और इस तारीख में बहुत अहम है, जबकि इससे पहले पोप अमेरिका की इन हरकतों की मजम्मत कर चुके हैं। वो सारी चीज़ें आपकी निगाहों के सामने हैं। आखिर में बारगाह परवरदिगार में दुआ करते हैं, पालने वाले हम सबको आमाल सालिहा की तौफीक बदलाम आल कबीहा से महफूज रखें, पालने वाले हमारे गुनाहों को बख्श दें, बदला हमारे मरहूमीन को बख्श दें, पालने वाले इस्लाम व मुसलमीन की हिफाजत फरमाएं, बदला दुश्मनान इस्लाम को नीस्त व नाबूद कर दें, पालने वाले हमारे उलमा का साया हमारे सरों पे बाकी रखें, बदला रहबर व मराजे को तूल उम्र इनायत फरमाएं, पालने वाले हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाएं, हमें उनके आवान व अंसार में शरीक होने की तौफीक इनायत, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد

18 की बात आती है और एक 18 साल जवान अली अकबर मुझे याद आता है। तारीख में यह है कि जमात जवाद का, इमाम जवाद का इंतकाल हुआ था, बाप मौजूद नहीं था, बेटा मदीने में था। अरे बाप आया नहीं, क्योंकि बाप था ही नहीं। अली अकबर जब जमीन पर गिरे आवाज दी, अस्सलाम अलैका या बता, हुसैन करबला की रेत में गिरे। कभी उठते जाते थे, कभी गिरते जाते थे, लुटी हुई वो कमाई बस तलाश मिली। फवदा खद्दहु अला खद्द इब्ने, अपने गाल को अली अकबर के गाल पे रख दिया। बेटा मैं आ गया, बेटा मैं आ गया, आंखें खोलो। अली अकबर ने आंखें खोली, समझ गए बाबा बहुत परेशान है, बाप बहुत परेशान है। जुमला का बाबा, देखिए दादा आ गए, देखिए दादी आ गई, देखिए नाना आ गए, आप एक अवसर लाए हैं, घबराइए नहीं। रिवायतों में कि 3 बार हुसैन अली अकबर के गाल पर गाल रखते थे, उठाते थे, लेकिन जब 3री बार रखा सर नहीं उठा। अजरकुम अल्लाह। इमाम जवाद की मज़लूमी, एक न मज़लूमी और उसके बाद ख़त्म दुआ। रिवायत में है कि छत पर आपकी वफा शहादत हुई है, जालिमों ने छत से आपकी लाश को ज़मीन पे गिराया। एक मर्तबा चाहने वालों ने आपको गसल दिया, इमाम तशरीफ़ लाए एजाज से, इमाम हादी गसल दिया इमाम को, फिर एक मजमे ने आपके जनाजे को उठाया। अरे हमारे यहाँ भी जब वफात होती है तो हम लोग रोते ज़रूर हैं, लेकिन जितने चाहने वाले लवाहिकीन होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, पूछते हैं गुस्ल हो गया, कफन हो गया, दफना दिया गया, जब तक दफनाते नहीं सुकून नहीं होता। अल्लाह सैयद सज्जाद भी तो किसी का बेटा है, उसके दिल में भी तो यही तमन्ना है। जनाब ज़ैनब कहती है मेरी सवारी जब करीब से गुजरी, भाई की पाम लाश बेटा हाथों को बांधे हुए देख रहा है। मैं समझ गई इसकी रूह जब चले जाएगी मर जाएगा, मैंने सीने से लगाया। बेटा घबराना नहीं, मैंने बाबा से सुना है यहाँ कब्रें बनेगी, यहाँ जियारत करने वाले आएंगे। सैयद सज्जाद ने क्या कहा, फूफी अम्मा जिसका बेटा जिंदा। وسيعلم الذين ظلموا

तो 8 लाख मजलिसें तो यही हो गईं। कराची में अंदाजन 40 मकामात पर जुम्मा होता है, अंदाजन। आशरे कितने होते हैं? 2 महीने 8 दिन तकरीबन तमाम इमामबारगाहों के अंदर मजलिस होती है। सारे साल वीकेंड्स पर मजलिसें होती हैं। ये जो मैं सारी मजलिसें शुमार करूं तो ये मिलियन से ऊपर जाएंगी, सही है? ये तो चलो कराची हो गया। क्या ऐसा है कि ब्रेडफोर्ड में मजलिसें 25 साल पहले के मुकाबले में कम हुई हैं? इमाम बारगाहें बढ़ रही हैं, मस्जिदें बढ़ रही हैं, मजलिसें बढ़ रही हैं, कुरान छप रहे हैं, मफाती छप रही है, सब कुछ छप रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब ज़रा दिल पे हाथ रख के मैं कहीं पे सवाल करता हूँ, बाज़ औक़ात लोग कुछ लोग गुस्से में आ जाते हैं, तो जिनके अंदर गुस्सा थोड़ा ज़्यादा है मैं पहले से ही एडवाइस करूँगा आधा गिलास पानी पी लें, सही है? मैं आपसे एक बात पूछूँगा, इस सब के साथ सच बढ़ रहा है या झूठ बढ़ रहा है? दिलों की मोहब्बतें बढ़ रही हैं? मुझे बताओ दीन जा कहाँ रहा है? ये जो हमने 10 लाख मजलिसों में मेहनत की, एवरेज एक मजलिस में 50 पार्टिसिपेंट ले लूँ ना, ये 5 करोड़ घंटे बन जाएंगे आगे जाके। एक शहर में 5 करोड़ घंटे या 50 लाख घंटे भी तबलीग हो रही हो और वहां नफरतें बढ़ रही हो क्या रहा है? एक वजह है हम इल्म बढ़ा रहे हैं, अमल नहीं बढ़ा रहे। इल्म बढ़ रहा होगा उसका भी डाउट है मुझे, उसका भी मुझे डाउट है कि इल्म भी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। बकौल भाई के कि मसलन अगर यही पूछ लो कि एक लाइन सहीफ़े सज्जादिया से, इन्होंने तो किसी बच्चे से पूछा था, बुजुर्गों से पूछ लो, मुश्किल में फंस जाएंगे हम लोग। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम कुछ बातें कर रहे हैं मजालिस के अंदर, शायद इल्म बढ़ रहा हो, ये एक बात तयशुदा है, अमल नहीं बढ़ रहा। अमल बढ़ता तो कुछ और हो रहा होता। अब हमने दूसरा पॉइंट ये सोचा कि हमने मजलिस जब भी पढ़नी है कोई ना कोई अमल की बात ज़रूर करनी है, तो आप यहाँ से बाहर जाने से पहले आप अमल की कोई बात अपने हाथ में लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एक तीसरी बात मैं और अर्ज़ करूँगा और मौसू की तरफ आता हूँ, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। صلی علی محمد علی محمد باجل فرج۔ میرے بہت سارے دوست احباب ہیں میری طرح بولنے والے، وہ جب مجلس پڑھتے ہیں تو ایسی قوموں کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں جو یہاں نہیں آتے، ان کے اوپر بہت محنت کرتے ہیں جو نہ یہاں آتے ہیں نہ یہاں جو کچھ بولا جاتا ہے اس کو سنتے ہیں، ان پہ بہت محنت کرتے ہیں، اور جو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے کام کی کوئی بات نہیں کرتے۔ اس کا ایک نقصان ہو گیا، جس کے لیے ہم کہتے ہیں وہ سنتا نہیں ہے، اور جو سننے کے لیے بیٹھا ہے اس کے کام کی کوئی بات ہم، تو پھر نتیجہ وہ ہے جو میں نے دوسرے پوائنٹ میں بتایا تھا۔ پھر میں نے اپنے لیے ایک بات طے کی، میں کہا بھائی میں دوسری قوموں کو نہیں سناؤں گا، جو مجھے باتیں کرنی ہیں وہ اپنے دوستوں سے ہی کروں گا، مجھے انہیں کچھ نہیں سنا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے انشاءاللہ۔ اب اپنی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اب اصلی بات کی طرف آتا ہوں تاکہ مزید آپ کا وقت نہ لگے۔ ایک مثال سے شروع کروں گا اور کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا میں اس کو تیز کر پاؤں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ بعض اوقات کوئی ہم سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے مولانا میں کیا کروں کہ میرا بیٹا بچہ امام کے لشکر میں شامل ہو جائے۔ اچھا یہ سوال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بہت کرتے ہیں۔ 40 سال پہلے اتنا ذکر نہیں تھا، اگر

को ना याद हो तो मैं बता रहा हूँ, 40 साल पहले मैं कराची में एक शिया आबादी में रहा करता था, ईरान जाने से पहले, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, 40 साल पहले उस आबादी के लोगों को दुआए सलामती इमाम ज़माना नहीं आती थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, 1984 की बात बता रहा हूँ। ज़ाहिर है यहाँ जो बहुत सारे बच्चे बैठे हैं वो 84 में पैदा नहीं हुए होंगे, लेकिन 84 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, दुआए सलामती नहीं जानते थे। इलाही अज़मल बला सीखे हुए चंद साल गुजरे थे। दुआए नुदबा कराची में कहीं नहीं होती थी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत, और मैं शिया आबादी में रहता था। दुआए कुमैल शुरू हुए हुए 3-4 साल हुए थे, 84 में हमारा ये आलम था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत तरक्की हो गई है, अभी सबको दुआएं काफ़ी आ गई हैं। शब कदर के आमाल में मुट्ठी भर लोग आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत तरक्की हो गई है, बहुत तवज्जो हो गई है। तो अब इस तवज्जो में होते हुए कुछ लोग एक सवाल करते हैं, वो ये कि मौलाना हम अपने बच्चे को चाहते हैं इमाम की नुसरत करें, इमाम के लश्कर में पहुँचे, क्या करें, कैसे पहुँचे। अच्छा, मेरे पास एक रास्ता ये है कि मैं उसको हदीसों की कोई किताब बता दूं, जैसे मैं एक अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूं, बहुत नफीस एक किताब थी, अरबी में लिखी गई थी, उसका नाम था मुंतखबुल असर, उसका उर्दू में तर्जुमा हुआ जमाल मुंतज़र, इंतहाई मुस्तनद, इंतहाई खूबसूरत किताब, उर्दू में मौजूद, इंटरनेट पर अवेलेबल, किसी को वक्त के इमाम की मुनासबत से अहादीस का मुताला करना हो, ये किताब बहुत अच्छी किताब है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं मुमकिन है कि एक किताब बता दूं जो मैंने बता दी, लेकिन मुझे पता है कि हमारी कौम को किताब पढ़ने की आदत नहीं है, साफ बात है। तो मैं एक और काम करूंगा, मैं एक मिसाल देता हूं और मैं आपसे उस मिसाल के ज़रिए से ये पूछूँगा कि क्या ऐसा आदमी इमाम के लश्कर में होगा, उससे हम ये सीख पाएंगे कि कैसा आदमी इमाम के लश्कर में होगा। मैं आपसे अभी पूछता हूँ, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ये मैं सिर्फ फर्ज कर रहा हूँ, कह नहीं रहा हूँ, फर्ज कर रहा हूँ। फ़र्ज करें आपसे कोई ये कहे, इंशाल्लाह नहीं कहेगा, सिर्फ फ़र्ज़ कर रहा हूँ, फ़र्ज़ करें आपसे कोई ये कहे कि इमाम का लश्कर होगा, उसमें एक बंदा ऐसा होगा, ऐसा है नहीं, फ़र्ज़ करूँ, चौथी दफ़ा कह रहा हूँ ताकि कोई बीच से क्लिप निकाल के ना डाल दे। फ़र्ज़ करें कोई कहे, खुदा ना करे, नऊज़ु बिल्लाह ताला, ऐसा है नहीं, कोई कहे कि इमाम के लश्कर में एक बंदा ऐसा होगा, नऊज़ु बिल्लाह ताला, कि वो हर रोज़ अपनी फजर की नमाज कज़ा करता होगा, आपका दिमाग मानता है नहीं मानता? क्यों? आपका दिमाग मुझसे कहेगा कि मौलाना 1100 साल तकरीबन इंतज़ार किया, और 1100 साल जिस लश्कर का इंतज़ार किया, आप ये कह रहे हैं कि उस लश्कर में एक बंदा ऐसा होगा जो रेगुलर फजर की नमाज नाउज़ु बिल्लाह ताला कज़ा करता होगा। अब मौलाना ये कैसे मुमकिन है? मैं कहूँगा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं एक बात पूछता हूँ, अगर मैं रोज़ाना फजर की नमाज़ कज़ा करता हूँ और कहता हूँ मैं इंशाअल्लाह इमाम के लश्कर में जाऊँगा, अब मैं अपने दावे में सच्चा हूँ या झूठा हूँ? दावे पिछली कौमों ने हमसे ज़्यादा या हमारे बराबर के किए हैं, इससे मामला हल नहीं होता। आपको दावा करने के साथ कोई अमल ऐसा करना होता है जो आपका जहन भी कह रहा होता है ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपका एक सहल पसंद आसान तबीयत रखने वाला जहन ये कह रहा होता है इसके बगैर भी चल जाएगा, और अभी आपने खुद कबूल किया कि नहीं चलेगा। तो मुझे सिर्फ ये एक बात बता देना, ये इतने परसेंट लोग जो हर रोज सुबह फजर की नमाज कज़ा कर रहे हैं, ये किस उम्मीद पे कर रहे हैं, कैसे चलेगा? अभी खुद आपका दिमाग कह रहा है नहीं चलेगा। मैं एक और अर्ज करता,
اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی

ठीक है, और उस पैसे को वो मेरे हिसाब में कहीं खर्च नहीं करता था। तो मैंने उसको पूछा एक दफ़ा कि भाई जहाँ तुम्हारा सेंटर है उसके पीछे ही एक मोमिन बच्चों का यतीम खाना भी है, मैंने नहीं सुना कि तुम उस सेंटर को कुछ देते हो यतीम खाने को, जबकि मुझे पता है और तुमने मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि तुम्हारे पास बैन अक्वामी करेंसी में ढालते हुए तकरीबन $1,00,000 पर मंथ एक्स्ट्रा आता है। उसने खुद बोला था कि $1,00,000 पर मंथ मुझे रिसोर्सेज से सेंटर को मिलता है खर्चा ना होने के बराबर। तो मैंने कहा तुम उनको क्यों नहीं दे देते, मिंबर पे बैठा हुआ हूं, मिंबर पे बैठा हूं। उसने मुझे कहा मौलाना मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं बैंकों में रख रहा हूं, जब इमाम आएंगे तब दूंगा। मैं एक बात सोचने पे मजबूर हो गया, कहीं मैं भी तो वही नहीं हूं, अपना पैसा अपनी रिसोर्सेस दीन पे नहीं लगा रहा और अपने आप को धोखा दे रहा हूं, जब इमाम आएंगे तो लगा दूंगा, कतअन नहीं लगा पाऊंगा। अगर मैं ऐसा हुआ मैं कतअन नहीं लगा पाऊंगा। अच्छा एक और आदमी क्या कहता है, मौलाना आज तो मैं इतना अच्छा आदमी नहीं हूं लेकिन जिस दिन जहूर हुआ उसी दिन सारी बुराइयां खत्म कर दूंगा। ये दावा है या धोखा है? ये धोखा है। क्यों? एक आदमी मुझसे कह रहा है मौलाना 1 दिसंबर को एक मैराथन होगी जिसमें 40 किलोमीटर दौड़ना होगा, मुझसे तो 400 मीटर भी नहीं दौड़ा जाता लेकिन जिस दिन मैराथन होगी मैं 40 किलोमीटर दौड़ के दिखाऊंगा। ये 4 किलोमीटर दौड़ ले बड़ी बात है, मेरी तरह होगा ये? तो मैं कह रहा हूं जिस दिन इमाम आएंगे मैं सारी बुराइयां खत्म कर दूंगा। सुनने कोई नहीं मिलेगा, सुनने कोई नहीं मिलेगा। क्या पहले नहीं हुआ ऐसा, मौला ने रोजे आशूर दुश्मनों से कहा तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी क्योंकि तुम्हारे हराम तुम्हारे शिकम में है। इमाम ने कहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो लोग ऐसी बुराइयों में मुबतला हों जिनका उनको पता है कि बुराई है फिर भी मुबतला हैं, उनको मजलूम सामने खड़े हुए इमाम की आवाज सुनाई नहीं देती है। और हम सोच रहे हैं कि हमें गैबत में बैठे हुए इमाम की आवाज सुनाई देगी, ये नहीं होगा। फिर अगर किसी ने तब्दील करना है अभी करना है, अगर किसी ने दीन के लिए कुछ करना है अभी करना है, वरना फिर नहीं होगा कभी। ये इमाम की तशरीफ आवरी का तकाजा है जो हमसे किया जा रहा है। अब एक इस मसले में एक पॉइंट और आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा और वो प्रैक्टिस है जो अब मुझे आपको देनी है ताकि आप यहाँ पे जाने से पहले कुछ आपके हाथ में हो कि भाई कोई पूछे आपने क्या मैसेज दिया, ये मैसेज दिया करने के लिए। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सल अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज। कोई और जगह होती ना जहाँ 3 दिन पढ़ना होता तो मैं जितनी बातें अभी तक कही हैं इनको 2 दिन में पढ़ता आहिस्ता आहिस्ता, ताकि जो लोग सुनने वाले हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सुने और कबूल भी करें। मैंने सब उलट दिया, ऐसे ही बोल दिया। क्यों? वक्त नहीं है। और मैं एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी में से क्या बचा, मुझे नहीं पता इमाम की तशरीफ़ आवरी से पहले कितना वक्त है। अब भी कोई ये कहना मैं थोड़ा देर कर लेता हूँ सही नहीं, फ़ायदा नहीं है, नुकसान उठाएंगे। अब देर का टाइम नहीं है, अब जो करना है ना कर लो। क्यों? मौत का तो किसी को भी नहीं पता ना कब हो। मैं क्या गारंटी से कह सकता हूँ आज रात जिंदा हूँ? क्या मैं कह सकता हूँ? नहीं कह सकता। तो ये कैसे मुतमईन हो जाऊं कि कुछ ना करूं हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? कुछ करना होगा। अब मुझे आपकी खिदमत में एक प्रैक्टिकल पॉइंट अर्ज करना है। जो दोस्त अहबाब सुन लेते हैं और बाद वक़्त याद भी रख लेते हैं, मेरे ख्याल में एक जगह जहां मैं जाऊं और मुझसे कोई कहे मौलाना सवाब के अलावा रिजल्ट कोई निकला, सवाब के अलावा

अलावा तो मैं ये समझता हूं अगर 20% लोगों ने कोई चीज सीख ली काफी है, काफी है। 80%, 70%, 50% मैं गया उस बात से, मैं नहीं कर सकता। 20% लोग सीख लें काफी है, बहुत है। अब मुझे एक पॉइंट कहना है, वो 20% जो सीखने वाले होते हैं उनकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, खुदा का वास्ता इसको ज़रूर सुन लेना और सीखने की कोशिश कर लेना, फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज। एक दफ़ा मैं एक जगह मजलिस पढ़ने गया, मजलिस के बाद नज़र नियाज थी। ये वाक्या मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा लोगों को सुनाया ताकि मुझे भी याद रहे, मैं भूल ना जाऊँ कहीं, और मेरे पास ज़्यादा इल्म है भी नहीं, मैं तकरार करता हूँ चीज़ों को। मैं एक दफ़ा एक जगह पे गया मजलिस पढ़ने के लिए, वहाँ नज़र नियाज हो रही थी, मैं नियाज के लिए बैठा हुआ था, एक आदमी मेरे पास आया, वो जगह एयरपोर्ट के नज़दीक थी, रात का वक्त था। उसने कहा मौलाना, वो आया मेरे पास पूरा नहीं बैठा, जैसे यूँ आधा बैठा आधा खड़ा हुआ, इसको कहते हैं तजाफी। हमें दुनिया में ऐसे होना है जैसे जब चाहें खड़े हो जाएं चले जाएं, इसको कहते हैं तजाफी। वो आया इस तरह बैठा, उसने कहा मौलाना मुझे एक सवाल करना है, किसी ने पूछवाया है, फौरन जवाब दीजिएगा, मुझे एयरपोर्ट पे शिफ्ट लगी हुई है, मुझे वहाँ जाना है, तो आप मुझे फौरन जवाब दीजिएगा, मुझे देर हो रही है। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। उसने कहा मौलाना जल्दी से बताइएगा मारिफत इमाम क्या होती है। मैं घबरा गया, मैंने कहा पता नहीं कौन सा फरिश्ता है जो इम्तिहान लेने आ गया है इतनी जल्दी में। माइक्रो सेकंड में मेरे जहन में आया इससे कौन बंदे खुदा मुझे माफ़ करो, कल आ जाना सही से बता दूंगा। फिर मेरे जहन में आया न तुम, ऐसे ही माइक्रो सेकंड में यूं जैसे लहराता है ना बात, मेरे जहन में न तुम जिंदा हो कल पता नहीं, न ये जिंदा है पता नहीं। एक जुमला कोई अकल में आता है तो बोल दो। अचानक मेरे जहन में एक जुमला आया, मैंने जुमला बोल दिया, वो जुमला सोचे समझे बगैर मैंने बोल दिया, शायद जिंदगी में मैंने कम ऐसा किया होगा कि कोई जवाब मैंने इतना बेसोचे समझे बोला होगा, रिस्क लिया मैंने बोल दिया। जैसे ही मैंने बोला अचानक मेरे दिमाग में आया, अच्छा उसने कहा हाँ मौलाना बहुत शुक्रिया, चलने लगा। ओह मेरे दिमाग में आया कि मैंने क्या गलती कर दी, सोचा भी नहीं था बोल दिया। एक आदमी को कहा इसको पॉइंट कर लो, देख लो ये बंदा कौन है, कल मुझे शायद बुलाना है इसको, ताकि अगर मैंने गलत कहा है तो इसको बुलाऊं तो सही, कि उसको सही करूं। उसने कहा मौलाना मैंने इसको नोट कर लिया। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने वहीं बैठे बैठे सोचा जुमला सही था या गलत था, तो मुझे लगा जुमला सही था। रात को घर आया, दोबारा सोचा जुमला सही था या गलत था, मुझे लगा सही नहीं था बहुत अच्छा था। फिर मैंने अपने आप से पूछा अगर इतना ही अच्छा था तो तुमने इस पर अमल क्यों नहीं करा, तुम अमल करो इस पे, लिमा तकुलूना मा ला तफअलून, क्यों ऐसी बातें करते हो जिस पे अमल भी नहीं करते, तुम अमल करो। तो मैंने देखा नहीं जुमला सही है, अमल के काबिल है, अमल करना चाहिए। अब वो जुमला मैंने आपसे अर्ज करना है, छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अमल की है। जनाब उसने पूछा था मारिफत इमाम क्या होती है, मैंने उसको एक जुमला कहा था, इमाम की पसंद और नापसंद को पहचानना मारिफत इमाम है। जो इमाम को पसंद है वो तुम्हें पता हो, जो इमाम को पसंद नहीं है वो तुम्हें पता हो। अगर कोई ये करे ये मारिफत इमाम है, सही। मैंने कहा भाई अगर ऐसा ही है तो मैं इस पे अमल क्यों नहीं करूं, कैसे अमल करूं। अब वो बात जो अमल की है, एक सादा सा काम कर लो। आप देखो कुछ आप मेरे बच्चों की उम्र के हो, कुछ लोग मेरे भाई की उम्र के हो, कुछ मेरे बड़े भाई की उम्र के हो गए, सही है, शायद ही कोई बुजुर्ग हो जो मेरे वालिद की उम्र का होगा। सब के लिए मुखलिस होकर एक जुमला कह रहा हूँ, अल्लाह के सामने जवाब दूंगा मैं, ठीक है, इतने लोगों का मैं इतना टाइम क्यों ज़ाया करूँगा, एक जुमला अर्ज करूंगा। आपने जिंदगी में कोई भी काम करना है, जो भी करना है, इस बंदे से दोस्ती करनी है, इसके साथ बैठना है, उससे लड़ना है, टीवी पे ये

देखना है, मोबाइल पे ये देखना है, ये किताब पढ़नी है, ये तस्वीर देखनी है, जो भी काम करना हो, अपने आप से एक सवाल पूछो, इमाम इस पे खुश होंगे? बस जो मर्जी करना है करो, एक सवाल अपने आप से पूछते रहो, इमाम इस पे खुश होंगे? अगर जहन ये कहे कि खुश नहीं होंगे, मैं आपको तालिबे इल्म होने के नाते गारंटी से कह रहा हूं, अगर आपका दिमाग कहे कि इमाम इस पे खुश नहीं होंगे, किसी भी मसलहत की खातिर वो काम करोगे, जिल्लत नसीब होगी, खुशी नसीब नहीं होगी, सुकून नसीब नहीं होगा। जो बच्चे गुनाह कर रहे होते हैं ना, ये सोचते हैं इसको कर लो थोड़ा सा मजा आएगा, बाखुदा मजा नहीं आएगा। जितना तुमको लग रहा है मजा आएगा, उससे 10-10 गुना इसके ऊपर तुमको अपने जहन के ऊपर सख्ती डालनी पड़ेगी। ये निजाम है खुदा का। क्यों? जिनको जिनको अच्छा नहीं लग रहा, वो खुतब आदम है, अल्लाह की नेमतें उनके जरिए से बरसती हैं। अगर उनको अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें कभी खूबी नहीं मिलेगी, कभी खुशी नहीं मिलेगी। मुझसे मैं अपने आप से कहूं, बस मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा फजर की, क्यों? मेरी नींद खराब होती है। बाखुदा इमाम को नाराज करके तुम्हें 8 घंटे भी सो लो तो सुकून नहीं मिलेगा। बाखुदा मिंबर पर बैठ के क्या खुशी उनके हाथ में है, बरकत उनके हाथ में है, उनकी नाराजगी जिस चीज में हो उसमें बरकत कैसे आ सकती है? कोई बंदा कहे मौलाना मैं थोड़ा सा ही गलत काम करूंगा, मुझे असल में पैसा चाहिए, तो इस पैसे को लेने के लिए मैं थोड़ा सा गलत करूंगा, मैं तुमको बाखुदा कह रहा हूं इमाम खुश नहीं हुए, तुम्हें जो पैसा मिलेगा तुम्हें और फकीर करेगा। और अगर इमाम की खुशी के खातिर कोई चीज छोड़ दी तो क्या होगा? तजर्बे से अर्ज कर रहा हूं, थोड़ा सा अगर इमाम की खुशी की खातिर मैंने अपनी कोई पसंदीदा चीज छोड़ दी, खुदा शाहिद है इमाम उस चीज को या उससे बेहतर चीज को मेरे कदमों में लाके डाल देंगे, कदमों में लाके डाल देंगे। उन इमाम की अजमत पर दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद। मुझसे कोई बच्चा कहे मैं फला गुनाह करता हूं चूंकि मुझे मजा लेना है, मैं उससे कहूंगा बेटा ये गुनाह मत करो, अपने इमाम पे एतमाद करो, तुमको ऐसा मजा मिलने वाला है जिसका तुमने नहीं सोचा है। देने वाले वो हैं, तुम तो छीन भी नहीं सकते, तो बिला जमी ये हिमाकत क्यों कर रहे हो? अपने हाथ से अपने पांव पे क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हो? मत मारो। बस अमल की बात क्या हुई? अमल की बात छोटी सी बात ये हुई, ना इसके लिए उसूल काफ़ी पढ़नी है, ना इसके लिए कोई तफसीर कुरान पूरी पढ़नी है, ना इसके लिए मरीख पे जाना है, ना कहीं और जाना है, यहीं रहते हुए छोटा सा एक काम करना है। वो क्या? जब भी कोई काम करने लगो अपने आप से एक बात पूछना, इस पे इमाम खुश होंगे? अब मैं थोड़ी सी एक कमी करता हूँ एक जगह, सवाल इसकी जगह एक और कर लो, को इस पे इमाम नाराज तो नहीं होंगे? ये थोड़ा सा मैंने कम कर लिया। अगर वो सवाल करूं ना इस पे इमाम खुश होंगे या नहीं होंगे, तो वो सारी चीजें निकल जाएंगी जो न्यूट्रल होंगी, खुश तो नहीं होंगे, नाराज भी नहीं होंगे। तो मैं कह रहा हूं आसानी के लिए ये सवाल कर लो, इस पे इमाम नाराज तो नहीं होंगे? अगर तुम्हें लगे नाराज होंगे, कभी मत करना। अच्छा, अगर तुम्हारा दिल ये कहे नहीं मालूम नाराज होंगे या नहीं होंगे, खुश होंगे या नहीं होंगे, शायद नाराज नहीं होंगे, कर लो। मशवरा तो ये दूंगा, ना करो, सिर्फ वो करो जिस पे इमाम खुश होंगे, सिर्फ वो करो। लेकिन अगर कोई कहे मेरे जैसा कमजोर इंसान के मौलाना मैं इतना स्ट्रिक्ट नहीं हूं, ठीक है, फिर एक काम करो, करने से पहले पूछो इस पे इमाम नाराज तो नहीं होंगे? अगर तुम्हें लगे नाराज होंगे, छोड़ दो, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मत मारो। अगर छोड़ दिया तो क्या होगा?
उससे बढ़कर तुम्हारे कदमों में होगा, उससे बढ़कर तुम्हारे कदमों में होगा। और अब इसको देख लो कि हम लोगों के साथ जिंदगी में बहुत दफा ऐसा होता है, हम सुकून के पीछे भाग रहे होते हैं, सुकून नहीं मिलता है, बहुत दफा ऐसा होता है। ये मैंने अर्ज कर दिया। अब एक बात और कानून के हिसाब से अर्ज करता हूं, दुनिया के कानून के हिसाब से जिसके ऊपर खुदा ने खल्क किया है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मोहम्मद वाजिल फरज। देखो भाई, आपसे मेरा कोई रिश्ता सिवाय ईमान के नहीं है, सही, उसी के तहत बात कर रहा हूँ। मैं अब इस एज में आ गया हूँ ना, अब यहाँ तक आते आते मुझे बहुत दौलत नहीं चाहिए होगी, मुझे खबर नज़र आ रही है अपनी, मुझे नज़र आ रहा है मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, किसी भी टाइम पे ख़त्म हो जाएगी। चलो जब मैं 30-35 का था, 20-25 का था, तब मेरे एम्बिशंस होंगे और पता नहीं मैंने क्या क्या सोचा होगा, एंथुसियाज्म होगा, वो सब खत्म हो गया है भाई। अब मैं 60 साल का होने वाला हूँ, चला गया वो, अब मैं दौलत लेके भी क्या कर लूँगा, आगे मुझे मौत नज़र आ रही है अपनी, सही। अब कोई कहे मौलाना आपको अपनी शोहरत चाहिए ना तो ये कर लो, गुजर गई वो बातें, अब कहाँ की शोहरत, अब मैं क्या करूँ उस शोहरत का। अब कोई मुझसे कहे आपकी ज़िंदगी का हदफ क्या है, एक तो उखरवी हदफ है, उसको मैं अभी कह रहा हूँ भी छोड़ दो, उखरवी हदफ मुझे बताओ, मैं अपनी बाकी ज़िंदगी में हदफ क्या बनाऊँ। 15-20 साल का बच्चा बैठा हो ना, वो कहेगा मौलाना मेरी ज़िंदगी का हदफ ये है कि मैंने फ़लाँ गाड़ी लेनी है, फ़लाँ विला ख़रीदना है, फ़लाँ ये वो, तुम कर लो तो ठीक है कर लो। क्या तुम कभी मेरी तरह बूढ़े नहीं हो गए, तो तुम्हें अगर 25 साल खेल खेल में गुजारना है ना, गुजार लो, आओगे तुम भी यहीं पे, कहाँ आओगे। दौलत हदफ नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, शोहरत हदफ नहीं बन सकती। क्यों? मैंने बड़े बड़े दौलतमंदों को जलील होते देखा है, तुमने नहीं देखा क्या? देखा, बड़े बड़े ताकतवरों को तन्हाइयों में रगड़ रगड़ के मरते देखा है, नहीं देखा क्या? देखा है। अब मैं कहूं मुझे ताकत चाहिए, उस ताकत के रखने वालों को जलील होते देखा है मैंने, तन्हाइयों में मरते देखा है, क्या मुझे वो अंजाम अच्छा लगा क्या? नहीं। तो मैं अपने आप से पूछता हूं, अब तुम्हारी जिंदगी में बचा क्या है, क्या चाहिए? ये सवाल आप 25 साल की उम्र में भी कर लो, बहुत अच्छा है, एक जवाब दूंगा, यकीन मानो, दिल से अर्ज कर रहा हूं आपसे, एक चीज़ मुझे चाहिए। वो क्या? मुझे कुछ लोग चाहिए हों जिनको मैं दिल से चाहता हूँ और वो मुझे दिल से चाहते हों। हाँ, एक लुमले में मुझे सुकून चाहिए। और मुझे पता है दौलतों से सुकून नहीं मिलता है, शोहरतों से सुकून नहीं मिलता है। सुकून किससे मिलता है? सुकून चाहने वाले लोगों से मिलता है। अच्छा, जब हम लोग ताकतवर होते हैं ना, तो ऐसे लोगों को अपने पास से भगा चुके होते हैं। जब हम कमज़ोर होते हैं तो वो हमारे नज़दीक नहीं आते, फिर हमें तन्हाई में मरना होता है। मैं इतना अहमक नहीं बनना चाहता, मैं अपने आप को इतना पागल नहीं देखना चाहता। तो मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे हों जिनको मैं दिल से चाहता हूँ, और कुछ लोग मेरी ज़िंदगी में ऐसे हों मेरे अतराफ में जो मुझे दिल से चाहते हों। इसमें सुकून है, इसमें सुकून है। अब मुझे कोई नुस्खा ये बता दे कि ये होता कैसे है। अगर कोई मुझसे कहना मौलाना दौलत कैसे मिलती है, तो मैं कहूँगा भाई किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास चले जाओ, मैं नहीं बता सकता। अलबत्ता मैं बता सकता हूँ, मुझे पता है। अगर कोई मुझसे कहे मौलाना ताकत कैसे मिलती है, तो मैं कहूँगा भाई ऐसा करो किसी पॉलिटिशियन के पास चले जाओ, वो तुम्हें बता देगा। मेरे पास भी एक नुस्खा है, मैं बता सकता हूँ। मैं कहूँगा इसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर कोई मुझसे कहे मौलाना ये चाहने वाले लोग कैसे मिलते हैं, मैं कहूँगा अब आओ मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि मुझे भी यही चाहिए, मुझे भी यही चाहिए। आप मुझे बताओ, देखो भाई आप में से कुछ लोग हैं जो मेरी उम्र से ज़्यादा हैं, कुछ लोग हैं जो मेरी उम्र के बराबर हैं, तन्हाई में मरना अच्छा लगता है?

अगर कोई जवान यहाँ बैठा हो ना जो कहे मौलाना मुझे परवाह नहीं है मैं मरूंगा, मैं कहूँगा नहीं तुम बेवकूफ हो, अभी तुम्हें अकल नहीं आई, अभी नहीं मर सकते तन्हाई में, बहुत बुरी है। और यहाँ बड़ा बुरा हशर है, पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ बहुत बुरा हशर है। बचते कैसे? एक नुस्खा अर्ज करूँगा, ये नुस्खा दौलत में भी काम आता है, ताकत में भी काम आता है, उसमें काम लाओ कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसमें काम ले आओ सुकून। सुकून कैसे मिलता है? इस नुस्खे को मैं अर्ज़ करता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी के चंद निचोड़ों में से एक निचोड़ है, इसको मैंने सीखा है और सब रिवायतों के ऊपर बेस करता है, सब रिवायतों के ऊपर बेस करता है। अहले बैत की रिवायतें पढ़ते रहो, इल्म खुलता रहेगा आपके सामने। दुरूद भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, صل على محمد وآل محمد وعجل فرج। आप सबसे मेरी एक सिर्फ दरख्वास्त है, अब तक मेरी बातें अच्छी ना लगी हो ना, इसको सुन लेना, इसको सुन लेना। आपको ज़िंदगी में जो चाहिए वो थोड़ा थोड़ा पुरखलूस इंसानों को देना शुरू कर दो, खुदा बढ़ा बढ़ा कर आपको वापस दिला देगा। भाई मुझे सुकून चाहिए, थोड़ा सा सुकून इंसानों को दे दो, खुदा क्या करेगा? खुदा बढ़ा बढ़ा कर वो सुकून तुम्हें दिलवाएगा, तुम्हें नहीं भागना पड़ेगा। हम लोग समझ रहे हैं दुनिया लेने पे बनी है, दुनिया देने पे बनी है, दुनिया देने पे बनी है। क्या मतलब? अब मैं अपने बचपन को याद करता हूँ, जब मैं प्राइमरी स्कूल में था और तो वहाँ पे हमें टीचर्स ऊपर किताब कॉपी की लाइन लिख दिया करते थे, नीचे वही लाइनें लिख कर लाओ, और उसमें लिखा करते थे जैसी करनी जो बोगे। आप क्लास अव्वल पास कर गए। मुश्किल हम मुसलमानों के साथ ये है कि हमने बैत उला पास नहीं किए, इस्लाम के PhD हो गए। पहली बैत थी झूठ मत बोलना, खयानत मत करना, हमसाय का ख्याल करना, अमानतों के अंदर वादा खिलाफी में इज्तनाब करना, वादा खिलाफ। हमने पहली बैत नहीं की, PhD है इस्लाम के अंदर। आपको ज़िंदगी में सुकून चाहिए, छोटा सा एक काम कर लो, सुकून देना शुरू कर दो। अच्छा कोई कहे मौलाना आपने तो कहा सुकून मोहब्बत करने वाले, इज्जत चाहिए नहीं चाहिए? हाँ चाहिए, इज्जत चाहिए, साफ बात, इज्जत चाहिए, बेइज्जती नहीं चाहिए। अल्लाह के दीन की खातिर बेइज्जती आ रही हो ठीक है सह लेंगे, कोई बात नहीं, अल्लाह के दीन ने सारी ज़िंदगी इज्जत दिलाई है, अगर अल्लाह के दीन की खातिर चार दिन बेइज्जती उठानी पड़ी उठा लेना, कोई मसला नहीं। इज्जत चाहिए? हाँ चाहिए। छोटा सा एक काम करो, जिसको लोग बिला वजह में इज्जत नहीं दे रहे जबकि बेचारे का हक था, तुम उसको इज्जत दे दो, तुम उसको इज्जत दे दो। अल्लाह ऐसी इज्जतें दिलाएगा कि बड़े बड़े तुम्हारे सामने हैरान खड़े होंगे कि इनको इज्जत कहां से मिल जाती है। हाँ सुकून चाहिए, सुकून दो, इज्जत चाहिए, इज्जत दे दो, एहतराम चाहिए, एहतराम दे दो। दिखावे का दूं? नहीं, बेलौस, बेलौस दो, सही है। अब मुझे खुशी चाहिए, सादा सा काम करो, लोगों को खुशियां दे दो, बेलौस, बेलौस। इल्म चाहिए? इल्म दे दो, इल्म दे दो। तुम चाहते हो खुदा तुम्हारी रहनुमाई करे, जिनको रहनुमाई की जरूरत है उन्हें बेलौस रहनुमाई दे दो, खुदा रहनुमाई करेगा। जो तुम्हें चाहिए वो दे दो। अब इसका एक उधर का मसला भी है, वो क्या? अगर मैंने कोई गलत चीज दी तो क्या होगा? वो भी बढ़ बढ़ के पलट के आएगी। मैं लोगों के साथ मक्कारी करूं तो क्या होगा? अल्लाह मेरे अतराफ में मक्कारों को जमा कर देगा। मैं झूठ बोलूंगा तो क्या होगा? झूठे मेरे साथ खड़े होंगे, बात बात पे झूठ बोलेंगे। मुझे सच्चे चाहिए तो क्या करूं? सच बोलो, खुदा सच्चे दे देगा। जो आपको ज़िंदगी में चाहिए थोड़ा थोड़ा इंसानों को देना शुरू कर दो। अगर यहाँ पे कोई बैठा हो क्या मौलाना मुझे कुछ समझ में नहीं आया कहाँ से शुरू करूँ, एक जगह मैं बता देता हूँ, दुआ देने से शुरू करो।